अनुपमा रॉय के स्वर में संत मीराबाई की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में संत गुरु नानक जी की ये भक्ति रचना।

लता मंगेशकर के स्वर में संत गुरु नानक जी की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। इसी के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।

거다. 내가 또 된다. 된다.

ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राग बैरागी में ख्याल गायन. आज के कलाकार हैं खगेश कीर्तनिया. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं रूपक मित्रा और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं देवाशीष अधिकारी.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This morning we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to a khayal in the rag Bairagi. Our artist is Khagesh Kirtaniya. Accompanying our artist on the tabla is Rupak Mitra and on the harmonium is Devashish Adhikari.

0: ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थे खगेश कीर्तनिया। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे रूपक मित्रा और हारमोनियम प्रसाद दे रहे थे देवाशीष अधिकारी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग परमेश्वरी में सितार वादन। कलाकार हैं कौशिक बसाक। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं इंद्रनील भादुड़ी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ ख्याल इन द राग बैरागी। आवर आर्टिस्ट वॉज खगेश कीर्तनिया। अकंपनिंग आवर आर्टिस्ट ऑन द तबला वॉज रूपक मित्रा एंड ऑन द हारमोनियम वॉज देवाशीष अधिकारी। This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present a sitar recital. Listen to a sitar recital in the rag Parameshwari. Our artist is Kaushik Boshak. Accompanying our artist on the tabla is Indranil Bhaduri.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग परमेश्वरी में सितार वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे कौशिक बसाक। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे इंद्रनील भादुड़ी। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a sitar recital in the rag Parameshwari. Our artist was Kaushik Boshak. Accompanying our artist on the tabla was Indranil Bhaduri. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनते हैं अरविंद कुमार आजाद का तबला वादन, ताल तीन ताल। साथ संगत है हारमोनियम पर देश पांडे।

बनारस घराने में बांट बजाने का अपना प्रचलन है, तो हम आपको जाति की विशेषता से बांट सुनाएंगे। अलग अलग जातियों का उसमें कैसा समन्वय है।

Kadın,

अभी आपने अरविंद कुमार आजाद का तबला वादन सुना। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब सुनते हैं विकास पुरंदरे का तबला वादन, ताल तीन ताल। साथ संगत है हारमोनियम पर उमेश पुरोहित।

अभी अपने विकास पुरंदरे का तबला वादन सुना, साथ संगत की थी हारमोनियम पर उमेश पुरोहित ने। रागम 24/7 डीटीएच चैनल के लिए ये आकाशवाणी पुणे की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं रागम 24/7 डीटीएच चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है नीता माथुर का गाया राग बिहाग. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं कैसे सुख सोवे, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं आली री अलबेली सुंदर नार. तबले पर आपकी संगति की है पंडित केदारनाथ ने, और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट अ वोकल रेंडिशन इन राग बिहाग बाय नीता माथुर. द विलंबित ख्याल इज सेट टू एक ताल. द वर्ड्स आर कैसे सुख सोवे एंड द्रुत ख्याल इज सेट टू तीन ताल. द वर्ड्स आर आलीरी अलबेली सुंदर नार कंपनीड बाय पंडित केदारनाथ ऑन द तबला एंड ऑन सारंगी बाय पंडित भारत भूषण गोस्वामी.

0: अभी आप नीता माथुर का गाया राग बिहाग सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए राग जोग। मध्य लय ख्याल रूपक ताल में निबद्ध है, बोल हैं हो बलमा, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं साजन मोरे घर आए। तबले पर आपकी संगति की है पंडित केदारनाथ ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडेशन इन राग बिहाग बाय नीता माथुर। नाउ वी प्रेजेंट राग जोग। द मध्य लय ख्याल is set to Rupak Taal. The words are Ho Balma and Drut Khayal is set to Teen Taal. The words are Sajan More Ghar Aaye, accompanied by Pandit Kedarnath on tabla and on sarangi by Pandit Bharat Bhushan Goswami.

0: अभी आप नीता माथुर का गाया राग जोग सुन रहे थे, और लीजिए अब सुनिए राग देश। मध्यलय तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं झूलत सांवरे संग गोरी। तबले पर आपकी संगति की है पंडित केदारनाथ ने, और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल जनरेशन इन राग जोग, नाउ लिसन टू राग देश। मध्यलय ख्याल इज सेट टू तीन ताल, द वर्ड्स आर झूलत सांवरे संग गोरी, अकंपनीड बाय पंडित केदारनाथ ऑन तबला एंड ऑन सारंगी बाय पंडित भारत भूषण गोस्वामी।

0: अभी आप नीता माथुर का गाया रागदेश सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी पंडित केदारनाथ ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन बाय नीता माथुर अकॉम्पनीड बाय पंडित केदारनाथ ऑन तबला एंड ऑन सारंगी बाय पंडित भारत भूषण गोस्वामी। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

在红姑娘的别太就叫你说嘛

0: hablando.
1: Ya estamos. Yo ya me soy.

我那个表达。

Kill that

我得干些干么？我来给他唱，有家里说，满年有家里说。

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रागम 24/7 DTH चैनल. कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत. सुनते हैं शास्त्रीय गायन. प्रारंभ में सुनते हैं विदुषी लक्ष्मीबाई जाधव द्वारा प्रस्तुत राग बहार. विलंबित तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है सब बहार आए, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है बसंत की धूम मची. सात संगत सारंगी ए.के. कुंटे, तबला डी.के. जोशी. तो आइए सुनते हैं राग बहार. कलाकार विदुषी लक्ष्मीबाई जाधव.

श्रोताओं, अभी आपने सुना विदुषी लक्ष्मीबाई जाधव द्वारा प्रस्तुत राग बहार। आपके साथ सारंगी पर संगति कर रहे थे ए.के. कुंटे और तबले पर संगति कर रहे थे डी.के. जोशी। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं सरदारीबाई कारदगेकर द्वारा प्रस्तुत राग पुरिया। विलंबित त्रिताल में निबद्ध रचना के बोल हैं आज पलन आए।

सरदारीबाई कारदगेकर द्वारा प्रस्तुत राग पुरिया आप सुन रहे थे। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं विदुषी गंगूबाई हंगल द्वारा प्रस्तुत राग अडाणा। विलंबित तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है जो तेरी रजा जो चाहे। साथ संगत हारमोनियम अप्पा जलगांवकर, तबला शेषगिरी हंगल। तो आइए सुनते हैं विदुषी गंगूबाई हंगल द्वारा प्रस्तुत राग अडाणा।

श्रोताओं, अभी आपने सुना विदुषी गंगूबाई हंगल द्वारा प्रस्तुत राग अडाणा। आपके साथ हारमोनियम पर संगति कर रहे थे अप्पा जलगांवकर, तबले पर थे शेषगिरी हंगल। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग चांदनी केदार में सितार वादन. आज के कलाकार हैं पंडित बुधादित्य मुखोपाध्याय. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित अनिंद चट्टोपाध्याय.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल. लिसन टू अ सितार रिसाइटल इन राग चांदनी केदार. Our artist tonight is Pandit Budhaditya Mukhopadhyay. Accompanying him on the tabla is Pandit Anindya Chattopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सितार पर राग चांदनी केदार सुन रहे थे। आज के कलाकार थे पंडित बुधादित्य मुखोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित अनिंद्य चट्टोपाध्याय।
1: Tonight you are listening to a Hindustani sitar recital in rag Chandni Kedar, performed by Pandit Budhaditya Mukhopadhyay. Accompanying the artist was Pandit Anindya Chattopadhyay on the tabla.
2: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। आज की शाम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत हमारी प्रस्तुति सरोद वादन। कलाकार हैं उस्ताद आशीष खान। उस्ताद आशीष खान आज प्रस्तुत करेंगे राग जोग में सरोद वादन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं विक्रम घोष।
1: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनीटाइम इंडियन म्यूजिक। दिस इवनिंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल। लिसन टू अ सरोद रिसाइटल इन द राग जोग। आवर आर्टिस्ट टुनाइट उस्ताद आशीष खान। द अकंपनिंग आर्टिस्ट इज Bikram Ghosh on the tabla.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सुन रहे थे राग जोग में सरोद वादन। आज के हमारे कलाकार थे उस्ताद आशीष खान। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे विक्रम घोष। यह कार्यक्रम आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की प्रस्तुति थी। रागम 24 घंटे 7 दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a Hindustani sarod recital in the rag jog. Our

अपने गायन की प्रारंभिक शिक्षा अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती लता देवले जी से प्राप्त की। आगे चलकर उन्होंने ग्वालियर घराने के श्री रघुनाथ वाघ जी से विशेष रूप से टप्पा गायन सीखा और पद्मश्री पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी से गुरु शिष्य परंपरा के तहत ख्याल, ठुमरी, नाट्य संगीत

0: भजनों की गहन शिक्षा ग्रहण की।
1: Born into a musical family, Shri Devle received his initial training in vocal music from his mother, the late Srimati Lata Devle. Later, he specialized in tappa singing under the guidance of Shri Raghunath Vag of the Gwalior Gharana. Furthermore, under the traditional Guru Shishya Parampara, he received intensive training in khayal, dhumri, natya sangeet and bhajans from the Padma Shri recipient Pandit Jitendra Abhisheki.
0: तानसेन, कालिदास, सवाई गंधर्व जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समारोह के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन और खाड़ी देशों में अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देवले जी आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार हैं। साथ ही आप संगीत शिरोमणि और विक्रमादित्य जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत है।
1: एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन, श्री देवले हैज डिलीवर्ड outstanding performances at prestigious national festivals such as the Tansen, Kalidas and Savai Gandharva Festival, as well as in the USA, UK and the Gulf countries. He has also been honored with several prestigious awards, including the Sangeet Shiromani and Vikramaditya Awards.
0: Sudhakar Devle ji apne karyakram ki shuruaat raag Puriya se kar rahe hain. Vilambit khayal ke bol hain, pyare degar lagi. जो एक ताल में निबद्ध है, द्रुत ख्याल के बोल हैं, चलो हटो जी छेल, काहे रोके गेल, जो त्रिताल में है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उल्लास राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: श्री सुधाकर देवले इज कमेंसिंग हिज परफॉर्मेंस विद राग पुरिया। द कंपोजिशन इज सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स प्यारे देगर लागी। द कंपोजिशन इज सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स चलो हटो जी छैल काहे रोके गैल। Accompanying him on the harmonium is Pramod Borgaonkar and on the tabla is Ulhas Rajhans.

Nene dani madaga maga sanada madani da sanere sanere.

राग बसंती केदार सेट टू झपताल विद द लिरिक्स बर्नीन जाय सकी सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स मेरी बसंत अब आयोरी।

0: अभी आपने सुना सुधाकर देवले जी का गायन राग बसंती केदार। सुधाकर देवले जी कार्यक्रम का समापन राग हंस धनी में तराना से कर रहे हैं। त्रिताल में निबद्ध रचना के बोल हैं दारा दीम तदारी दानी दीम।
1: यू आर जस्ट लिसनिंग टू द वोकल परफॉर्मेंस ऑफ श्री सुधाकर देवले जी इन राग बसंती केदार। श्री सुधाकर देवले इज कंक्लूडिंग हिज प्रोग्राम विद तराना इन राग हंस ध्वनि सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स दारा दिम तदारे दानी दिम।

0: आपने सुना सुधाकर देवले जी का गाया राग हंस ध्वनि में तराना। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उल्लास राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा संपन्न होती है।
1: यू आर जस्ट लिसनिंग टू अ तराना इन राग हंस ध्वनि रेंडर्ड बाय श्री सुधाकर देवले। अकंपनिंग हिम वर प्रमोद बोरगांवकर ऑन द हारमोनियम एंड उल्लास राजहंस ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी इंदौर। विद दिस टुडेज अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा कम्स टू एन एंड।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब प्रस्तुत है समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत

अब आप सुनेंगे सरदार खां का सारंगी पर बजाया राग गांधारी, तबले पर संगत की है हफीज खां ने। नाउ लिसन टू द राग गांधारी बाय सरदार खां ऑन द सारंगी। तबला accompaniment has been provided by हफीज खां।

आप सुन रहे हैं सारंगी वादन, कलाकार हैं सरदार खां। यू आर लिस्निंग टू हिंदुस्तानी सारंगी रिसाइटल बाय सरदार खां। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे दादरा धुन। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स अ दादरा धुन।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी सारंगी वादन। कलाकार थे सरदार खां। संगत कलाकार थे तबले पर रामस्वरूप रतौनिया। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सारंगी रिसाइटल बाय सरदार खां। द अकॉम्पनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला। This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत. आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत गिटार वादन. कलाकार हैं दीपांकर राय चौधरी. इस कार्यक्रम में पहले सुनते हैं राग नट भैरव. तबले पर संगत की है भरत कुमार मिश्र ने.

अभी आप सुन रहे थे दीपांकर राय चौधरी का गिटार पर बजाया राग नट भैरव। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया गिटार पर राग कीरवानी। तबले पर संगत की है भरत कुमार मिश्र ने।

ये दीपांकर राय चौधरी की गिटार पर बजाई राग मिश्र पहाड़ी धुन, तबले पर संगत की थी भरत कुमार मिश्र ने। ये कार्यक्रम रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत के अंतर्गत आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सहयोग से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित एल के पंडित का गाया राग विभास. विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है. बोल हैं मोहन जागो और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं आज मोरे घर आए. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और सारंगी पर अमीर खान ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित एल के पंडित. He begins his recital with a performance in Raag Vibhas. The Vilambit Khayal is set to Tilwada Taal. The words are Mohan Jago. The Drut Khayal is set to Teen Taal and the words are Aaj Mure Ghar Aaye. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak and on the sarangi by Amir Khan.

अभी आप पंडित एल के पंडित का गाया राग विभास सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और सारंगी पर अमीर खान ने। और लीजिए अब सुनिए इनका गाया राग शुद्ध सारंग। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं।

0: नाम निरंजन और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है। बोल हैं तू है निराकार। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और सारंगी पर अमीर खान ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग विभास परफॉर्म्ड बाय पंडित एल के पंडित। ही वाज अकंपनीड ऑन द तबला बाय विनोद पाठक एंड ऑन द सारंगी बाय अमीर खान। ही नाउ प्रेजेंट्स अ रेंडिशन इन राग शुद्ध सारंग। द विलंबित ख्याल इज सेट टू एक ताल एंड द वर्ड्स आर नाम निरंजन। द द्रुत ख्याल इज सेट टू तीन ताल। द वर्ड्स आर तू है निराकार।

0: अभी आप पंडित एलके पंडित का गाया राग शुद्ध सारंग सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और सारंगी पर अमीर खान ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: That was पंडित एलके पंडित परफॉर्मिंग राग शुद्ध सारंग। He was accompanied on the tabla by विनोद पाठक and on the sarangi by अमीर खान। This program was presented by All India Radio, Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का DTH चैनल रागम. आइए सुने भक्ति संगीत. हर रूप में छिपे हैं. आइए अब सुने RP शुक्ला की रचना विवेक प्रकाश की आवाज में.